0: सूफी स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैयां।
1: वो जालिमों का बहुत बुरा ठिकाना है।

0: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
1: facebook.com/fm247365
2: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM247365. कोहेतूर पर गूंजती मूसा की ये सदा है, जो हर शय में नजर आए बस वो ही खुदा है।

0: is clear. FM 100.
1: FM 100's time check. It's 8 a.m.
2: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
2: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.

0: 15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
4: Shared bundles, wo bhi discount par. Subscribe karna to banta hai. To bas abhi Jazz Cash app se Jazz V5 fantastic bundle lagao. और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
0: This program is brought to you by
5: इस जश्न-ए-आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान.
1: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं, कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्त सवाबित लागू है।
2: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में ₹15,000 या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या ₹50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37।
2: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
3: This program is brought to you by
4: Is Jashn-e Azadi Fatma Fertilizer ke saath milkar buland kare apne shehar ki shaan
3: and HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL and

तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी फिरका वाराना

0: FM 100 traffic update.
1: ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं हूं फारूक इजहार। शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक की इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह है। एफएम 100 को मिलने वाली इत्तला के मुताबिक वो तमाम ट्रैफिक जो इस वक्त जा रहा है कयूम आबाद चौरंगी से अख्तर कॉलोनी से दरमियानी रास्ते पर अब से कुछ देर पहले एक गाड़ी के खराब होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर थी और लोगों को गुजरने में वहां से दुश्वारी का सामना था। उस गाड़ी को वहां से अब हटा दिया गया है। वो लोग जो कयूम आबाद चौरंगी से इस वक्त सफर करना चाहते हैं अख्तर कॉलोनी सिग्नल और डिफेंस मोड़ की जानी आसानी इस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए अपनी अपनी मंजिलों की जानी सफर कर सकते हैं। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए FM 100 पाकिस्तान।
0: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।

0: FM 100's time check. It's 9 a.m.
1: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.

0: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
1: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV Box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe karein. Terms and conditions apply. Sharaat to sawabit lagu hai.
2: Step Schools se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
3: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्ने आजादी मुबारक।
4: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata per Jazz Cash se 50% cashback aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
6: At shopping of 5,000 rupees
5: only. And you're still here? Kiska intezaar hai?
6: Bhago!
7: Shared bundles. Wo bhi discount per. Subscribe karna to banta hai. To bas abhi. Jazz Cash app se Jazz V5 Fantastic Bundle lagao. और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
8: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
9: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान।
10: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशंस ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837.
1: This program is brought to you by
2: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान.
1: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.

0: It's 9:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. Ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां खा वहां HBL.

0: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज प्लस डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
3: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
4: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37।
5: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत जवाबित लागू है।
6: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
7: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर जैज कैश से 50% कैशबैक और Hyundai Elantra जीतने का मौका at shopping of 5,000 rupees only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
8: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
9: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर, बड़े डिस्काउंट्स के लिए। जैज कैश है ना।
10: This program is brought to you by
3: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान।
1: And HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
1: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं, कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत सवाबित लागू है।
2: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में ₹15,000 या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या ₹50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aise offers ab kahan?

0: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशन्स ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37.
1: This program is brought to you by
2: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान.
1: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा.
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
4: किसने कहा था पैसे

0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Back to back, only music, no RJ talk.
4: Only music, no RJ talk.
3: This is FM 100.
5: Come on.

0: ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
1: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
0: HBL Freedom account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom account, jahan khwab wahan HBL.
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं. ताहम बाज़ औक़ात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता. याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन OTP की तस्दीक या मखसूस USSD को डायल करना लाजिम होता है. याद रखें, PTA टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता. अगर आपने ना तो OTP शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है, तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए. अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं. सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं. ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा. अगर मुकर्रा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं. शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा. इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे. इसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें. अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं. याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा. लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें. अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें. इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें. अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है, तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था, क्योंकि PTA के पास शिकायत

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज़ इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अपराध के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.
4: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
5: Only music, no RJ talk.
4: This is FM.

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
0: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
0: FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: Your location for maximum music. FM 100's time check. It's 2 p.m.
1: It's happening aaj bhi. So keep up. Bata par JazzCash se 50% cashback aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
2: At shopping of 5,000 rupees
1: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
3: JazzCash ke saath pao phir se 1 crore jeetne ka shandar mauka. Ab har mahine apne JazzCash account mein 15,000 rupees ya zyada ka balance maintain karne par 60 lucky winners ko milega. 5 lakh rupees tak ka inaam. Aur saath hi saath milega 1 crore ka bumper prize. Balance maintain karne par karodon ke cash prizes jeetne ke liye JazzCash hai na.
4: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी JazzCash ऐप से Jazz V5 Fantastic बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए JazzCash है ना.
0: This program is brought to you by
5: Step School से Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
0: Us on facebook.com/FM247365. FM247365.
6: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है.
7: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है.
6: घर के अफराद और आमदनी में तवाजन
8: हमारी जिम्मेदारी है.
9: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
10: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: ایف ایم 100 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
11: السلام علیکم پاکستان.

0: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रूपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5 लाख रूपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
1: 100 FM।
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
3: Well, it's happening aaj bhi, so keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cashback aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
4: At shopping of 5,000 rupees
3: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
5: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए। जैज कैश है ना।
1: 100 FM।
7: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
1: Shared bundles, wo bhi discount par. Subscribe karna to banta hai. To bas abhi Jazz Cash app se Jazz B5 fantastic bundle lagao. Aur pao 2000 rupaye tak ka behtareen discount. Apne favorite bundles par bade discounts ke liye. Jazz Cash hai na.
2: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
6: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata per Jazz Cash se 50% cash back. Aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
3: At shopping of 5,000 rupees
2: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhaago!
4: Kahin phir se rehmo chacha. Apna danga lekar na aa jaye. Wo mujhe apni god mein bithayenge. Main ammi ko bhi batane se darti hoon.
5: Aam taur pe yahi samjha jata hai ki bachchon ke saath jinsi badsuluki sirf ajnabi karte hain. मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया. इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाएं. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: लिख दूंगा उससे ब्लड प्रेशर ठीक होगा। लाइफस्टाइल का ज्यादा इफेक्ट आता है, लाइफस्टाइल के बगैर उन दवाओं का डोज भी ज्यादा रहता है कंट्रोल करने के लिए और वो फायदा भी नहीं होता। तो मैं अपने मरीजों को ये कहता हूँ कि ये वृक्ष के तीन पहिए होते हैं ना, कि एक आपका जो है ना फिजिकल एक्टिविटी, एक आपका परहेज और एक आपकी दवा, तो एक पहिए पर रक्षा नहीं चलेगा।
1: ये बात सही है, बिल्कुल ठीक बात है। तो इन तमाम चीजों को मैनेज करना बहुत जरूरी है। आजकल नींद तो वाकई में, नींद में तो हम सिर्फ नौजवानों को नहीं कहेंगे बल्कि अब तो हर कोई जो है वो मोबाइल की वजह से नींदें पूरी नहीं कर रहा है, लेकिन बिल्कुल ये भी जो है वो मसले मसाइल खड़े कर देती है। तो आप लोग अपनी नींद जरूर पूरी करें। सिर कितने घंटे, 7 से 8 घंटे?
0: 6 से 8 घंटे,
1: 6 से 8 घंटे हम,
0: कि ये एक हेल्दी लाइफ पैटर्न है। और मतलब हमें अंदाजा है कि वर्किंग कितनी मुश्किल है यहाँ पे अर्न करना, तो लोग 12-12, 16-16 घंटे बेचारे काम भी कर रहे होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि 6 से 8 घंटे की नींद डेली की हो, ताकि ये है कि आपका नींद का साइकिल पूरा हो रहा हो।
1: नींद का साइकिल पूरा हो रहा हो, बिल्कुल जी। तो आपने अपनी नींद को भी पूरा करना है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, आवाम में इस बीमारी के बारे में आगाही कैसे बढ़ाई जा सकती है सर, ये भी अगर आप कुछ बताना चाहें किस तरह आवाम को हम मजीद इस हवाले से मालूमात फराहम की जाए।
0: ये हमारा प्रोग्राम इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हम लोगों में इसके मालूमात दे रहे हैं। इस किस्म के प्रोग्राम जाहिर है लोग सुनते हैं तो उसको माइंड बनता है। लोगों को अवेयर करने के लिए हमें स्कूलों के अंदर स्कूल हेल्थ के ऊपर दोबारा तवज्जा देने की जरूरत है, क्योंकि एक प्रोग्राम रोल बैक हो गया था। बच्चों को आजकल सिर्फ कैलकुलेटर बनाया जाता है, उनको नंबर्स के पीछे लगाया जाता है, उनको लाइफ गुजारने के तरीके और एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के तरीके और इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करने के तरीकों के ऊपर सोचा नहीं जाता। अनफॉर्चुनेट है हमारे स्कूल्स बंगलों में छोटे छोटे उसमें खुले हुए हैं जहाँ पे कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जिसमें जहाँ पे कोई स्किल बेस्ड ट्रेनिंग नहीं है। तो इस किस्म की चीजों के ऊपर माशरे में बेहतरी लाने की जरूरत है कि उनको अवेयरनेस और उनकी आगाही को बढ़ाया जाए कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपनी सेहत हमें खुद ही देखनी है। और उसके लिए सेहत अफजा मुकाम होना, सेहत अफजा एक्टिविटी का होना और लोगों की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो हमें स्कूल से शुरू करना चाहिए,
1: स्कूल से शुरू करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि बच्चे जो स्कूल में सीखते हैं ना, वो घर आकर जरूर डिस्कस कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट में कोई चीज सीखी है, कोई भी टॉपिक उन्होंने सीखा है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही है कि स्कूल से ही शुरुआत करनी चाहिए ताकि लोगों तक इस हवाले से आगाही फराहम की जाए। सर वैसे तो आपने हमें बेहतरीन मालूमात फराहम की है हर चीज से रिलेटेड। कम वक्त रह गया तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप कोई मैसेज देना चाहेंगे सर हमारे तमाम सुनने वालों को।
0: हमारे उस्ताद हैं, मैं उनका एक कोट यहाँ पे करता हूँ कि भाई इन तमाम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कॉन्टेक्स्ट में कम खाना, वर्जिश रोजाना, डॉक्टरों के पास रहेगा कम आना जाना।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: प्रोफेसर मशहूर आलम शाह साहब मेरे उस्ताद हैं, ये उनकी कोट है, वो हमेशा बोला करते थे। तो इज रिटायर्ड, इज खुद बीमार है आजकल, लेकिन ये है कि बहरहाल ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि हम खाते बहुत ज्यादा हैं और हम हिलते जुलते कम हैं। तो लाइफस्टाइल हमारी बेहतर हो और नींद पूरी करें, स्ट्रेस लेवल कम रखें, फिजिकल एक्टिविटीज करें, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह।
1: बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया इस वक्त हमारे तमाम सुनने वालों को, बड़ी अच्छी मिसाल दी है, तो ये हमारे तमाम सुनने वालों के बड़ी काम आएगी। तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके और आपके वक्त का। प्रोफेसर ज़ीशान अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, तबरोज़ फार्मा के तआवुन से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा था। हाइपर टेंशन हमारे प्रोग्राम का मौजू था जिस पर हमने गुफ्तगू की। इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है खत्म। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज एवरीवन।
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100's time check. It's 4 p.m. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365. FM100. 31 साल FM100. आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
3: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।
4: It's 24 hours, non-stop vibration, connecting you,
5: connecting,
4: holding you,
5: holding.
4: with FM 100.
5: FM 100. FM 100.

0: 100 FM.
1: चम चम चम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: This program is brought to you by
1: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खाब वहां HBL

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
3: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशंस ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837.
4: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back. Aur nayi gaadi? Sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
0: This program is brought to you by
5: Is Jashn Azadi Fatma Fertilizer ke saath milkar buland kare apne shehar ki shaan.
1: And HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.

0: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
1: तीन बार मौत देखे
2: टाइम से ऐसे ही कि मैं हूँ कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
3: फिर उन्होंने साड़ियाँ वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
0: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
4: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
0: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाप के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैस कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल मीडिया या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराह कोनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज़ के पेश नज़र ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट ऐप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बर वक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।

0: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशन्स ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37.
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
2: Well, it's happening aaj bhi, so keep up. Bata per Jazz Cash se 50% cash back aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
3: At shopping of 5,000 rupees
2: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
4: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर. 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न-ए-आजादी मुबारक.

0: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान।
3: And HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
4: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
5: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
0: This program is brought to you by
6: Is Jashn-e-Azadi Fatma Fertilizer ke saath milkar buland kare apne shahar ki shaan
1: and HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
1: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
2: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
5: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर जैस कैश से 50% कैश बैक और Hyundai Elantra जीतने का मौका
6: at shopping of 5,000 rupees
5: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
7: PTCL Flash Fiber आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत सवाबित लागू है।
8: किसने कहा था पैसे बचा।

0: बेटा। शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए। जैस कैश है ना।
1: 100 FM।
2: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाए सिर्फ ₹4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं, कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्त जवाबित लागू है।
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
4: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311-111-7837.
5: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ ₹2,000 तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
6: This program is brought to you by
7: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान।
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL। एंड
8: कैडिलैंड नॉनस्टॉप फन करते जाओ।
0: एंड
9: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
10: 100 FM।
11: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फिकार and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
12: Ye paigham حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
13: FM 100 Like Us on Facebook.com/FM247365 Back to back, back to back. Only music, no RJ talk. This is FM

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
1: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
1: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर जैस कैश से 50% कैश बैक और होंडा एलेंट्रा जीतने का मौका।
5: At shopping of 5,000 rupees
4: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
6: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
7: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf rupees 4,999 mein. Aur paaye free shock Android TV box worth rupees 15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe karein. Terms and conditions apply. Sharaat to sawabit lagu hain.

0: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365। FM 247365।
4: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
2: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर Jazz Cash से 50% cashback और Honda Elantra जीतने का मौका.
4: At shopping of 5,000 rupees
3: only, and you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
5: PTCL Flash Fiber आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ रुपीस 4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ रुपीस 15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं, कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत जवाबित लागू है।
6: किसने कहा था पैसे

0: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: 100 FM।
2: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV Box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe kare. Terms and conditions apply. Sharaat to sawabit lagu hai.
2: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
3: Shared bundles, wo bhi discount par. Subscribe karna to banta hai. To bas abhi Jazz Cash app se Jazz B5 fantastic bundle lagao aur pao 2000 rupees tak ka behtareen discount apne favorite bundles par bade discounts ke liye. Jazz Cash hai na.
4: Oral health ki baat Platinum Pharma ke saath. Is program ka mauzu hoga sehatmand daant, sehatmand zindagi. Program mein hamari mehman hongi Dr. Afifa Razi, Head of Department and Professor of Oral Medicine and Diagnosis at Jauddin University, Karachi. Budh 5 August, 2 baje, sirf FM 100 par. Dental Room by Platinum Pharma.
5: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया. बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
6: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें. मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
4: ये पैगाम حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
7: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
8: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
7: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا۔
9: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
10: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا۔
7: میں اوبیسیٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم ہوگی۔
9: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔
10: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
9: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں،
7: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
10: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں۔
7: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
11: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے، لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹ ورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا۔

0: FM 100's time check. It's 8 p.m.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
0: 100 FM
2: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
3: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर Jazz Cash से 50% cashback और Hyundai Elantra जीतने का मौका.
4: At shopping of 5,000 rupees
3: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
5: PTCL Flash Fiber आजादी ऑफर. लगाएं सिर्फ रुपीस 4,999 में और पाएं free shock Android TV box worth रुपीस 15,000. Free 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं. कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्त जवाबित लागू हैं.
6: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है. तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए. जैस कैश है ना।
7: facebook.com/fm247365
8: FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान,
9: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.

0: 8:30 PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. जहाँ ख्वाब वहाँ HBL.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
0: 100 FM.
1: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना.
2: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata per Jazz Cash se 50% cash back. Aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
3: At shopping of 5,000 rupees
2: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
4: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagai sirf rupees 4,999 mein. Aur paaye free shock Android TV box worth rupees 15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe karein. Terms and conditions apply. Sharaat to sawabit lagu hain.
5: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना.
0: 100 FM.
6: छम छम छम किताबे लेके निकले हम. अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम.

0: हूँ। कम ऑन,
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
2: 100 FM
3: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
4: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV Box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe kare. Terms and conditions apply. Sharaat to sawabit lagu hai.
5: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ ₹2,000 तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
2: 100 FM
6: चम चम चम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein. Aur paaye free shock Android TV box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe kare. Terms and conditions apply. Sharaat zawabit lagu hai.
0: Oral health ki baat Platinum Pharma ke saath. इस प्रोग्राम का मौजू होगा सेहतमंद दांत सेहतमंद जिंदगी. प्रोग्राम में हमारी मेहमान होंगी डॉक्टर अफीफा रजी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड प्रोफेसर ऑफ ओरल मेडिसिन एंड डायग्नोसिस एट जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कराची. बुध 5 अगस्त 2 बजे सिर्फ FM 100 पर. डेंटल रूम बाय प्लैटिनम फार्मा.
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखादही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार शदीद सर दर्द जिस्म और जोड़ों में दर्द मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें. मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ आपकी एहतियात आपकी हिफाजत.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है. ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है. पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें. मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है. इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे. सर्विस फाल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें. जैज सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#. अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए.
6: ये मुफाद-ए-आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है.
5: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए. याद रखें अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है. लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं. शनाख्ती कार्ड की منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
7: FM247365

0: FM 100's time check. It's 10 p.m.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
2: 100 FM शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए। जैज कैश है ना।
3: 100 FM
4: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
5: facebook.com/fm247365 fm247365
6: fm100 31 saal fm100 aapki awaaz। assalamu alaikum pakistan
7: assalamu alaikum pakistan

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
1: 100 FM शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए। जैस कैश है ना।
2: 100 FM
0: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
3: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: स्टेशन पर। मुनशियात को न कहीं जिंदगी को हाँ कहे, आइए इस खतरे के खिलाफ मुत्तहिद। नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान। एएनएफ का साथ दें, मुस्तकबिल बचाएं, कौम को मजबूत करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 247365

अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एनएसओने। म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है जनाब एक बजे तक, और एक बजे तक करेंगे खूब हल्ला ते गुल्ला, वो भी ओल्डी गोल्डी क्लासिक का। यानी कि आज के प्रोग्राम में आप सुन सकेंगे पाकिस्तानी मूवीज के पुराने और बहुत पुराने ट्रैक्स। हैं जी जी, हैं जी। इस ओल्डी गोल्डी क्लासिक में शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, के चाय लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज, और उसको सेंड कर दीजिए 3636 बार। जो लोग इस वक्त कार ड्राइव कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी गाड़ी की हेडलाइट लो बीम पर रखें, ट्रैफिक सिग्नल की पासदारी कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा जनाब, अगस्त का महीना है, जश्न आजादी का ये महीना है, 14 अगस्त पास पास है, और मैंने जैसा कि पिछले 2-3 शोज में ये बात कही थी आपसे कि हम जो सवाल फ्लोट करते हैं जो नॉलेज का, वो पाकिस्तान से रिलेटेड ही करेंगे। बहुत ही आसान सा सवाल फ्लोट कर रहा हूं, और अगर इसका जवाब फौरन से पेशतर आ गया तो एक और सवाल फ्लोट कर देंगे, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। बल्कि आज दो ही सवाल फ्लोट करेंगे, पहले घंटे में एक सवाल जो मैं फ्लोट करूंगा उसके जवाब बाद आप लोगों से लूंगा, तो उसका जो भी जवाब दुरुस्त होगा वो एक घंटे में अनाउंस कर दूंगा, और फिर नेक्स्ट आवर में एक और सवाल करेंगे आपसे। हैं जी जे, हैं जी। अब जनाब ओल्डी गोल्डी क्लासिक है, पाकिस्तानी मूवीज के गाने और बहुत पुराने गाने चलेंगे, तो उम्मीद करता हूं कि सब लोग बहुत इंजॉय करेंगे। फिलहाल आपको वार्म अप करते हैं, और वार्म अप करने के लिए चलता है गाना, और पहला गाना एलो पड़ो।

0: वेलकम बैक सोनिया, जिस तरफ आंख उठाऊं तेरी तस्वीरा है।
1: हाय लजी,
0: ब्यूटीफुल ट्रैक। और नाहिद अख्तर, मेहंदी हसन साहब की आवाज। उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रैक पसंद आया होगा और आप लोग थोड़ा सा वार्म अप हो चुके होंगे। सवाल की जानिब फौरन से बेशतर बढ़ते हैं। पाकिस्तान के हवाले से कुछ बात करूंगा मैं और उसके बाद सवाल की जानिब बढ़ेंगे। और हम लोग बहुत ज्यादा, अब एक होता है ना कि हर इंसान जिसको बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए तो वो जीभ ढीठ पने का शिकार हो जाता है, और जो उसके पास चीज मुयस्सर होती है जो झोली में आकर गिर जाए वो उसकी कदर नहीं करता। बस यही हाल हम पाकिस्तानियों का है। ये मुल्क हमारा जो है प्यारा पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से नवाजा हुआ है इस मुल्क को, मगर वो कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में बंदर क्या जाने अदरक का मजा। तो ये मुल्क तो हमें मिल गया है मगर हमें इसकी कदर का नहीं पता। यकीन मानिए कि अगर हम पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें अता फरमाई हैं, हम खुश दिली के साथ, ईमानदारी के साथ, नेक नियति के साथ अगर हम अपने इस मुल्क में काम करें तो आप यकीन माने, ये मैं 100% इस बात पर जो है वो डटा हुआ हूं। अगर कोई मुझसे इस बारे में बहस भी करना चाहे या मुझसे कुछ पूछना चाहे तो पूछ ले कि अगर हमारे अंदर ईमानदारी आ जाए, करप्शन खत्म हो जाए, हम इसको अपना मुल्क समझें और इस मुल्क को लेकर आगे बढ़ें तो कोई शक नहीं है कि दुनिया के तमाम मुल्क जो हैं, पाकिस्तान सबसे अमीर तरीन मुल्क हो और लोग यहां पर रोजगार के सिलसिले में आए। मगर बंदर क्या जाने अदरक का मजा, यानी कि समझ रहे ना, अल्लाह ताला ने हमें ये जो मुल्क अता फरमाया है, तमाम नेमतें अता फरमाई हुई हैं। हमारे इस मुल्क में पहाड़ हैं, मैदानी इलाके हैं, रेगिस्तान है, समंदर है, खजा है, बहार है, सर्दी है, गर्मी है, तमाम मौसमी फल जो है वो यहाँ पर हम उनकी पैदावार होती है। जाहिर है चारों मौसम है तो तमाम मौसमी जो फल हैं वो इधर मिलते हैं। जरखेज मट्टी है, मादनियात का खजाना है, मगर बंदर क्या जाने अदरक का मजा। अच्छा, इसमें हमें शर्म आनी चाहिए, हकीकत बता रहा हूं, उनमें मैं भी शामिल हूं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हूं, कि हम में ऐसी क्या बुराई है यार कि हम इस अल्लाह ताला ने जो नेमत अता फरमाई है हम इसको संभाल ही नहीं पा रहे हैं। हम दीवाने हैं पैसे के, भाग है भाग दौड़ जो लगी हुई है इस वक्त छोटे से छोटे तबके से लेके और ऊंचे से ऊंचे तबके की, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और जबकि वो ही बात आ जाती है, एक मुझे किस्सा याद आ गया और वो किस्सा ये है जनाब कि एक आपने किस्सा सुना होगा, गो कि फर्जी है मगर हकीकत है, ये बात समझाने के लिए ये फर्जी बातें बनती हैं कि एक शख्स के पास एक मुर्गी उसको ऐसे मिलती है जो सोने का अंडा देती है। वो सोने का अंडा ले जाकर बाजार में बेचता है, और बहुत सारे पैसे जमा करता है। इसी तरह वो हर दूसरे दिन बाद अंडा देती है। अब इसकी लालच जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचती कि वो सोचता है कि ये मुर्गी को ही क्यों ना काट दूं, जितने अंडे होंगे एक साथ बाहर आ जाएंगे। बस ये सोचा उसने और मुर्गी को ज़िबा कर दिया। जब ज़िबा किया तो फिर अंडे कहां से आते। बस हमारा यही हाल है। आगे बढ़ते हैं जनाब आपके मैसेजेस की जानिब और सवाल। हाँ, सवाल करना है जनाब। सवाल ये है कि पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है, और तकरीबन ये जरूरी नहीं है कि आप 100% बता रहे हो, 100% तकरीबन कितनी आबादी है उसकी, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है और उसमें तकरीबन कितनी आबादी है, ये आपने बताना है एक घंटे यानी 12 बजे तक। और अगर मुश्किल मुझे ऐसा लगा कि इसके जवाब जो है दुरुस्त नहीं आ रहे हैं, लोगों को मुश्किल लग रहा है, तो हम ये एक बजे तक ले जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं जनाब आप लोगों के मैसेजेस की जानिब। सबसे पहले फीता काटा है जनाब हमारे यूसुफ भाई पापूस से। तमाम सुनने वालों को और एफ एम हंड्रेड की तमाम फैमिली को सलाम कहा है। आंटी चाची अरूसा गुलबानो तमाम डॉक्टर्स इमरान भाई खिताब लाला गुफरान भाई और मेरे वाले सबको उन्होंने सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। जिस तरफ आंख उठाऊं तेरी तस्वीर आए। औरंगी टाउन से हमारी बहना रेहाना आ गई हैं और कह रही है इन्हें सलाम अर्ज है। इन्हें जोक जुबान के मुतालिक मालूमात। अच्छा जी, जोक से मुराद क्या है? अर्ज है एने जोक जुबान के मुतालिक मालूमात। खैर एनीवे, जुबान के जोक या जीप क्या कहना चाह रही है। खैर जुबान के मुतालिक उन्होंने कुछ मालूमात दी हैं और पहले मालूमात ये है कि कुत्ता वाहिद वो जानवर है जिसकी जुबान पर पसीना आता है। होए होए होए, गिरगिट की जुबान उसके जिसामत से दुगनी लंबी होती है। वाह वाह वाह वाह। और मगरमच्छ वो वाहिद जानवर है जिसकी जुबान नहीं होती है। भाई जुबान के मुतालिक क्या क्या मालूमात है, जबरदस्त भाई रेहाना। और कहती हैं इंसान उस वक्त सांस नहीं ले सकता जब तक जुबान मुंह से बाहर हो। मैं जुबान बाहर निकाल के देगी। अच्छा जी, और बाहर हो और जुबान अंदर कर लो भैया पागल लग रहे हो। ये मजाक था। और ये मुझ पर फिट हुआ है। गोपरान भाई आ गए। गोपरान भाई क्या हाल है आपका, ठीक ठाक है? और इंसान वो वाहिद मखलूक है जो अपनी बेइज्जती पे भी हंसता है। आखिर में फुल टाइम मेरी तफरी ले ली है रेहाना तुमने। लेकिन अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू वेरी मच। अयुब लाला दास खाना कह रहे हैं जाने जिगर ये हमें भी आपको सब गुल को मोश को महनूर को हिना को और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम का है। वालेकुम अस्सलाम। लाला आपके इस मैसेज पर हम जाएंगे एक ब्रेक की जाने।
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। Like us. us on facebook.com/FM247365. FM247365.
0: वेलकम बैक कहेंगे सोने हो बीर एक सुनिए हमने अरियोब लाल आखा मैसेज जो है हमने पढ़ा था प्यार भरा सलाम उन्होंने भेजा है और इस प्यार भरे सलाम के साथ हम बढ़ते हैं एक अदद ट्रैक की जानिब और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा और ये ट्रैक जो है जनाब हम अयूब आफरीदी की जानिब से डेडिकेट करेंगे सबागुल को महानूर को और जनाब ये कह रहे थे कि जनाब ये ट्रैक चलाएंगे तो निगत और माहिन बहुत खुश होंगी एल फड़ो

0: वेलकम बैक, मुझसे तुझको मुझसा तुझको चाहने वाला, हाय हाय हाय, लला खीसा गाना है यार, वाह वाह जबरदस्त। अच्छा जनाब, आपके मैसेजेस के जाने फौरन से बेहतर जाएंगे, मगर उससे पहले मैं सवाल रिपीट कर दूंगा। सवाल मैंने आज ये फ्लोट किया है कि आप लोगों ने ये बताना है कि पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है और तकरीबन उसकी आबादी कितनी है, ये भी आपने बताना है। आगे बढ़ते हैं जनाब। न्याज बहादुर आ गए भाई जन, हमारे बल्दिया टाउन से, कह रहे नदीम भाई आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से आपको और पूरी टीम को सलाम, मेरी तरफ से अयूब लाला महनूर को सलाम, और एक गाना डेडिकेट कर दे, गाना भी लिखा है उन्होंने, थैंक यू। और इफ्तिखार भाई आ गए हैं जनाब, बहुत दिनों के बाद मैसेज आया इफ्तिखार भाई, कह रहे नदीम भाई कैसे हैं, और सॉरी नदीम भाई 25 दिन के बाद शामिल हो रहा हूँ, कुछ मसरूफियत के बायस नहीं शामिल हो पाया। भैया इफ्तिखार साहब, मसरूफियत जो है अल्लाह ताला हर इंसान को मसरूफ रखे, मसरूफ से मुराद ये है कि जिस मसरूफियत में पैसे भी आए, मतलब काम के सिलसिले में अगर कोई मसरूफ है, रोजगार के सिलसिले में मसरूफ है, तो यानी कि समझ रहे हैं ना आप, तो नो प्रॉब्लम भैया, आप हमारे दिल में और रहेंगे, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। और सलाम कैसे हैं भाई आप, लाला को, संजीदा को, आपी को, और मुश्क महनूर और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम सबागुल। और कह रही नदीम भाई अभी शो लगाया है लाला के नाम, अच्छा सा गाना कर दें जो आपको और लाला को पसंद हो। लाला आपको कौन सा गाना पसंद है बताएं। और लाला कहते हैं कि जीबीएन की खातिर सबागुल, मुश्क महनूर को और आरजे नदीम अख्तर को और रिजवान के नाम कर दो जावेद अख्तर साहब का गाना। अभी खैर गाना तो मैंने कर दिया, मगर आपको लाला स्पेशली आपको एक गाना डेडिकेट करूंगा, फिल्मी गाना, और जब वो गाना डेडिकेट करूंगा तो फिर आपको बताऊंगा कि वो गाना क्या है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। अनीस भाई आ गए हैं और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, और तमाम लिसनर्स को उन्होंने प्यार भरा सलाम गाया, वालेकुम अस्सलाम। गाना खैर लाला को पसंद आ गया, लेकिन लाला आपको एक और स्पेशल गाना डेडिकेट करेंगे अपनी तरफ से करो। और उसके साथ साथ वो कहते हैं, है याद मुलाकात की वो शाम अभी तक, है याद मुलाकात की वो शाम अभी तक, मैं तुझको भुलाने में हूं नाकाम अभी तक, मैं तुझको भुलाने में नाकाम हूं अभी तक, तुझको दिखाऊं कि तेरे बाद सितमगर, आज तुझको दिखाऊं कि तेरे बाद है सितमगर, वीरान पड़े हैं ये दरोबाम अभी तक। क्या बात है, क्या बात है लाला। और संजू आ गई हैं, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अनगिनत दुआओं के साथ उनका मैसेज। और पहला गीत ही वाओ, जिस तरफ आंख उठाऊं बातें याद करके मुस्कान सजती है चेहरे पर, रूह है मन, अगर ये एहसास हो जाए आज की नस्ल को, बिना मेहनत के आजादी की सांसें ले रहे हैं तो शायद कदर हो जाए, ना शुक्रे हैं हम। अच्छा इसे नौजवान नहीं, कसूर इसमें हमारा भी है, बहुत नौजवान नस्ल से थोड़ा सा ऊपर जो है। फर्जी किस्से बात की अहमियत को जताने के लिए कहा जाता है, तो कैसा लगा था आपको फर्जी किस्सा मेरा, यानी कि समझ रही है ना आप। हाँ। और कहती हैं कि बहुत ही प्यारी जरीन नूर और बहुत ही प्यारी काबिले एहतराम नौरीन बहना के लिए ढेरों सलामती की दुआएं। एक पैराग्राफ है इनका, इनकी जानिब से, वो हम जरूर शामिल शो करेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद। तानिया हसन जी आ गई हैं, तानिया जी कैसी हैं आप, सलाम कह रही हैं तमाम सुनने वालों को, और माशाल्लाह माशाल्लाह से अभी रिसेंटली उम्र की अदायगी से आई हैं, और तानिया जी तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं हम। शोरी भाई एडवांस में वो आएंगे तो कहेंगे, लेकिन हैं जी, हैं जी, आपका मैसेज हम पूरा अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। और नदीम भाई कहां गया मेरे, नदीम भाई प्यारे भाई अस्सलामु अलैकुम, मिजाज शरीफ कैसे हैं, ढेरों दुआएं आपके लिए और तमाम हसीन तरीन जमातों के लिए भी, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा ओके है। और उन्होंने बताया भी है कि तकरीबन 13.25 करोड़। वाह भाई वाह। और गुड सॉन्ग जिस तरफ आंख उठाऊं, हाय हाय अल्लाह जी, इनको भी अच्छा लगा, क्या बात है। ये सॉन्ग मुझे फिल्म याद है, ये सॉन्ग मुझे फिल्म देखी थी अपने बचपन में। वाह वाह वाह जिस तरह, उस वक्त आपको आंख उठाने का ना मतलब नहीं पता होगा। आंख उठाने का मतलब अभी पता चला होगा आपको। और मुश्क हेयर, अरे वाह भाई वाह, सारे ही आ गए हैं माशाल्लाह से, लेकिन हमारा समी नहीं आया अभी तक। कह रही है अस्सलाम वालेकुम हैंडसम, क्या हाल है और क्या चाल है। चाल तो देखने से पता चलती है, वैसे हाल चाल दोनों ठीक है, दुरुस्त है। वेलकम आपको, क्या लिखूं, अलिफ से अनार दाना लिखूं या बे से बेसन की रोटी लिखूं या जीम से चे से चेवड़ा लिखूं। और रेसिपी बता दी है और हम इंतजार करते रहे, अभी डोरबेल बजेगी मगर नहीं। कंजूस मक्खी चूस नहीं बोलती है, केले केले खाते हैं। क्या खा रही है, क्या खिला रही है, किसको खिला रही है। और कहती है कि अयूब लाला चाचू, सबा गुल, अमीन मामू, समी दूला भाई के लिए बेस्ट विशेस, और जी बी एन चाची के लिए भी। अल्लाह जी बस मैं खुश रहूं, इसका क्या है, इसके पास तो मेरे जैसे 36 है ना। आज तो संजू का फेवरेट सेगमेंट है, एक रिक्वेस्ट है, मेल वॉइस मर्दाना आवाज में आपकी जात ही पसंद का सॉन्ग, ओनली संजू के नाम, भूलना नहीं। लिख लूं ये वरना नाराज बहुत जल्दी हो जाती है। ये मुश्क की जानिब से संजू के लिए गाना है जी, हमने लिख लिया। और बाबा जी फरमाते हैं कि शुक्र है व्हाट्सएप का उर्दू वर्जन नहीं आया, वरना लास्ट सीन की जगह लिखा जाता आखिरी दीदार। और भी इन्होंने कुछ मैसेज प्यारे प्यारे से भेजे हैं, चुलबुले से, वो भी शामिल शो करेंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ेंगे। समी किथे रह गया भाई, तू शादी की तैयारियों में लगा हुआ लगता है फुल टाइम। भाई अहमल खान साहब भी आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। और जनाब स्क्रॉलिंग हो रही है, स्क्रॉलिंग। मोहम्मद नदीम अख्तर भाई कैसे हो, अस्सलाम वालेकुम आपको और सब सुनने वालों को। मोहम्मद कह रहे हैं, नदीम अख्तर भाई कैसे हैं आप। मोहम्मद भाई अपने नाम के साथ कॉमा लगा लिया करें, ये पूरा नाम लिखा गया, मुझे ऐसे लग रहा है मेरे नाम के आगे ये प्यारा नाम लग गया। और जनाब रज़ाक तनोली, एने भाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, ओके, और जिसकी आबादी तकरीबन 13 करोड़ है। वाह भाई वाह, और बिल्कुल दुरुस्त बताया है वैसे, और नौरीन मेहना ने भी दुरुस्त बताया था। चले इसी बात पर हम आपको लेकर जाते हैं एक ब्रेक की जाने।
1: FM 24/7 365।
0: वेलकम बैक, आएंगे सुने हो आप सबको और लेकर जाएंगे एक और बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जाने। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएंगे। हेलो फड़ो

0: FM 24/7 365. FM 24/7 365.
1: वेलकम बैक, और वेलकम बैक के साथ ही जाएंगे जनाब एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानेब। और हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ ने कहा था कि एक अच्छा सा गाना संजू को डेडिकेट कर दीजिए, और उसके साथ साथ मुश्क ने भी कहा था, तो मुश्क की जानिब से और नौरीन तौसीफ की जानिब से संजू आपके लिए गाना एलो फड़ो।

0: वेलकम बैक, तेरे भीगे बदन की खुशबू से। ब्यूटीफुल ट्रैक यार, क्या बात है, वैसे बहुत ही रोमांटिक गाना भाई। और जनाब हाय, दिल से बात लिखी, रंगों के हवाले से लिखी, संजू ने ये कहा, बहुत खूब बहुत खूब। और तानिया हसन जी जो है उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे दिया है भाई, रकबे के लिहाज से, सॉरी आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है। तानिया जी बहुत बहुत शुक्रिया। और तकरीबन इन्होंने भी 13 करोड़ लिखा है, ये भी इस हवाले से भी मैं बताऊंगा कि ये दुरुस्त है या नहीं है, क्योंकि जो फिगर है वो मैं सारा पढ़ रहा हूं। अच्छा, ये मैंने कहा था कि अपने अंदाजे के मुताबिक भी आप बता सकते हैं, और करेक्ट फिगर मैं भी आपको बताऊंगा, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। हाय हाय, मेरी बहना रिक्वेस्ट कर रही है। और जनाब नौरीन बहना, अभी आपकी तरफ से हमने गाना डेडिकेट किया, एक और गाना, सबके दो दो गाने, तो संजू का एक क्यों, उसके भी 3 होने चाहिए, वैसे 3 लोगों ने ही डेडिकेट किया उनको। अच्छा जनाब, फरीम कह रही है जो लिखा है वो तो पढ़िए, आज शो जो है वो ठीक से नहीं सुन पा रही है, कनेक्शन डिसकनेक्शन हो रहा है। एंड व्हाट अ सो रोमांटिक सॉन्ग, थैंक यू, गाना पसंद आ रहा है यार बहुत। ये भी ना, और भी जितने भी आज ट्रैक्स चलेंगे आप लोगों को सब बहुत पसंद आएंगे। और अस्सलाम वालेकुम भैया, फरीदा बुरहानुद्दीन मेरी प्यारी सी बहन आ गई हैं, और कह रही है तबीयत कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, इतने वक्त बाद अपने अब याद किया, मैं आपसे नाराज हूँ। नाराज क्यों है, कुट्टी हूँ, कुट्टी नहीं हुआ करें भाई, और नाराज भी नहीं हुआ करें, यानी कि समझ रही है ना।
1: तेरे भीगे बदन की खुशबू से है,
0: एको में आवाज आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा था। अच्छा जनाब, ये हमारे मैसेज हो गए। नदीम भाई, मेरे दिल में जख्म से इतने सुराख है, सिलाई के लिए सीयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ धागा चल रहा होगा। अल्लाह ना करे, मेरी प्यारी सी बहन सवागुल कैसी बातें कर रही हो, सारे दिल के दागो सुराख जो आप कह रही हैं सब भर जाएंगे, जख्म भर जाएंगे, यानी कि समझ रही हैं ना। हमारी दुआएं आपके साथ हैं हमेशा। अमीन भाई आ गए सलाम के बाद, कह रहे हैं कौन था वीआईपी शो, एने भाई वालेकुम अस्सलाम, कौन था से क्या मुराद है, शो वीआईपी बिंदास बोले तो झगाज स्वीट फैमिली को उन्होंने सलाम कहा, वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान बाजार से रेहाना, अरे मेरी प्यारी सी बहना कहाँ गायब थी आप। और इन्हें भाई मेरा जवाब है 15 करोड़ के करीब इन्होंने बताया है, और सूबे का नाम भी बताया है। भाई आप मेरे बड़े भाई हैं और काबिले एहतराम है, जुबान वाला मैसेज एक जोक था आपके लिए। नहीं दारे मेरी बहना, कोई मसला नहीं है, क्या छोटी बहने मजाक नहीं कर सकती है, कर सकती है, मैंने जुबान निकाली भी थी बार। और अनीस कह रहे हैं भाई समझो, संजू का इक्तिबास बड़ा जबरदस्त था, सुनकर अच्छा लगा, और अच्छा लगना भी चाहिए, इनकी तहरीर हमेशा अच्छी होती है, इक्तिबास अच्छा होता है, उससे कम से कम शो में एक रंग आ जाता है, और रंग इस सूरत में आ जाता है कि हंसी मजाक चल रही है, और साथ ही साथ कोई एक ऐसी बात आ जाती है जो कि सबक आमोज होती है, जिसे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और अगर ऐसी बात भी शो में शामिल हो तो कितनी अच्छी बात है, यानी कि समझ रहे ना आप। चले इसी बात पर हम आपको लेकर चलते हैं एक अदद ट्रैक की जानिब, और ये ट्रैक जनाब हम डेडिकेट कर रहे हैं हमारी प्यारी सी बहना फरीदा बुरहानुद्दीन को। आप पूछे क्यों, क्योंकि हमारी इस बहना को इखलाक अहमद की आवाज बड़ी पसंद है, तो इखलाक अहमद का एक गीत फरीदा बुरहानुद्दीन के नाम, एलो फड़ो।

0: FM 100's time check. It's 12 midnight.
1: Welcome back, Soneo. जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बता दें जनाब, मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सोने हो। म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है जनाब एक बजे तक, और एक बजे तक ये हल्ला गुल्ला जारी हो सारी, वो भी ओल्डी गोल्डी क्लासिका, पाकिस्तानी मूवीज के पुराने और बहुत पुराने ट्रैक्स जो है वो हम आपको सुना रहे हैं, जो कि आपके पसंद भी आ रहे हैं। 14 अगस्त, अगस्त का महीना, पाकिस्तान का कौमी दिन, और इसके हवाले से, अगस्त के इस प्यारे से महीने के हवाले से मैंने पाकिस्तान से रिलेटेड एक जनरल नॉलेज का सवाल किया है, और वो सवाल ये है कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है और तकरीबन उसकी आबादी कितनी है, ये बताना है आपने, यानी कि समझ रहे हैं ना, और आप लोगों के जवाब भी आ रहे हैं और तकरीबन 90% लोग दुरुस्त जवाब

वाह वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, ये कासिम साहब आ गए हैं और क्या कहते हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, कल आपने बिल्कुल लेजेंड सिंगर किशोर कुमार जैसी आवाज और अंदाज भी, भाई की आईडी से मैसेज कर रहा हूँ, मेरा छोटा भाई जो आपको सुनता है और वो सिंगिंग भी करता है, उन्होंने मुझसे कहा है, नरीम भाई से कहें कि उनका रिकॉर्डेड एक सॉन्ग है ये वाला, अगर प्ले आप प्ले कर दें एफएम पर तो आपकी मेहरबानी और नवाजिश होगी। सॉन्ग कौन सा है मेरे शहजादे? ये सॉन्ग है, बस ये सॉन्ग है, नजर तो आ नहीं रहा। कासिम सैफ नाम है भाई का। अच्छा भाई, कासिम सैफ साहब वो गाना जो है उसका लिंक शिंक भेजें मुझे, ताकि मुझे पता चले आपने कुछ नहीं भेजा, बस मैसेज किया है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। हाय हाय हाय। अच्छा भाई, एक ट्रैक डेडिकेट करना है हमने फरहीम को भी, और कह रहे हैं कि शो बहुत जबरदस्त चल रहा है, क्या बात है सोनिया। एक इन्होंने जो है इंतखाब भेजा है, और इंतखाब कुछ मैं पढ़ देता हूं अब, क्योंकि दुबई से आया इंतखाब। दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, वाह वाह। दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, वीरान है मैं कदा गमो सागर उदास हैं, वीरान है मैं कदा गमो सागर उदास हैं, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के, एक फुर्सते गुनाह मिली वो भी चार दिन, एक फुर्सत गुनाह मिली वो भी चार दिन, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। फैज अहमद फैज, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, इतनी दूर से आपने किया ये मैसेज फरहीम, तो हमने आपके इस इंतखाब को शामिल शो किया, मगर ऐसे मैसेज सिर्फ जुमेरात को किया करें, अब बता दिया हमने आपको, है नहीं, यानी कि समझ रही है ना। इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में सारा दिन अकेले में, रात भर ख्यालों में, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में। बहुत दिनों के बाद हमने इसको इस तरह गुनगुनाया है। चले इसी बात पर चलते हैं एक और ट्रैक की जानिब, और ये ट्रैक जनाब हमारी प्यारी सी बहना नौरीन तौसीफ, कहां गया नौरीन का मैसेज, पहले मैं नौरीन का मैसेज देख लूं। ओके, नहीं नौरीन के लिए गाना नहीं चल रहा, वो हम अभी चलाएंगे। और जनाब हाँ चला रहे हैं भाई, हम चला रहे हैं उनके लिए गाना, तो नौरीन बहना की जानिब से, नौरीन बहना के लिए ये ट्रैक है जनाब, एल फड़ो।

वेलकम बैक। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे। मुजीब आलम साहब, क्या बात है, आपको डबल गाने सुनाए और डबल मजा आया होगा आपको। मेहंदी हसन साहब, जब कोई प्यार से बुलाएगा, और उसके बाद मुजीब आलम साहब, क्या बात है यार। और जनाब, मैसेजेस आपके आ रहे हैं कि जो स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज जिसको सेंड कर रहे हैं 3636 पर। हमारी प्यारी सी बहना नौरीन तौसीफ ने शुक्रिया भी अदा कर दिया। मेरी बहन, शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इनामुल हक कह रहे हैं कि अल्लाह पाक तानिया जी को का उम्रा जो है वो कबूल फरमाए, आमीन शुम आमीन, और मुबारक हो। अल्लाह ताला अल्लाह पाक तानिया जी को हमेशा खुश रखे और उनके सदके में सबको मदीना जाने क्या मदीना जाने जाना नसीब फरमाए और हाजिरी वहां पर नसीब फरमाए। आमीन आमीन सुम आमीन। इनामुल हक भाई, ये तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो मक्का और मदीना की ज्यारत करे। और जो नहीं गए, अल्लाह ताला सबके लिए दुआ है वाकई में, आपके तवस्सुल से मैं भी बोल रहा हूं कि उनको ये सआदत नसीब फरमाए। और बहुत बड़ी सआदत मिली है इस हवाले से दानिया जी को, और बस दुआएं हैं। और वहां जाने के बाद जो तड़प बढ़ती है इंसान की, वो वहां से जो होकर इंसान आता है ना, जो मुसलमान वहां से होकर आता है, तो जो साहिबे ईमान है तो वो बड़ा तड़पते हैं कि दोबारा जाना है, दोबारा जाना है, दोबारा जाना है। और हमारी दुआ है दानिया जी आपके लिए कि आप बार बार वहां जाएं और ज्यारत करें और हमारे लिए दुआ भी करें। हैं जी, ते हैं जी। हमने तेरे अजनबी शहर में सलाम की बात कह रहे हैं नदीम भाई, मोहनलाल यूके से, यानी कि उमरकोट से। नदीम भाई, हम तीन दोस्त हैं, मेरा दोस्तों के नाम हरीश कुमार और फरजान कयानी हैं। हमारी दोस्ती पिछले 22 साल से बिना किसी गिला शिकवा लड़ाई झगड़े के चल रही है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला नजरे बच से बचाए और आगे भी जब तक ऊपर वाले ने जिंदगी दी है तब तक चलती रहेगी। आमीन शुम आमीन। दुआ कीजिए और कोई अच्छा सा सॉन्ग डेडिकेट कर दें। बलूचिस्तान इन्होंने भी बताया है और आबादी जो बताई है वो तकरीबन 13.5 करोड़ बताई है इन्होंने। और नदीम भाई, प्लीज प्ले हम सॉन्ग। हम सॉन्ग, ये हम सॉन्ग क्या है भाई, जरा हम सॉन्ग के बारे में बताओ भाई। अच्छा भाई, हमारी फरीदा बुरहानुद्दीन कह रही, इतने वक्त बाद आपने ने अब याद किया, मैं आपसे नाराज हूँ। अरे, आपकी नाराजगी दूर करने के लिए तो आपके लिए गाना चला दिया हमने, इखलाक अहमद का गाना आपके लिए। पसंद नहीं आया क्या? हाँ जी, और आगे बढ़ते हैं जनाब। कासिम आ गया फिर भाई, अच्छा जी, लिंक, ये लिंक नहीं है कासिम सैफ, ये तस्वीर है, लिंक भेजो लिंक। और अमीन की जानिब से नौरीन बहना को सलाम, आज बैलेंस खत्म हो गया, मैं क्या करूं भाई, आज इजी लोड करवा दे और कल लौटा दूंगा। भाईजान, इसके लिए सबा बाजी से बात करो, सबा भाई के पास बहुत होगा। ये एक आता था ना इजी लोड वाली सबा। किसी जमाने में ये बड़ा मशहूर हुआ था कि हर कोई सबा, कोई सबा के नाम से जो है वो हर एक के मोबाइल पर मैसेज आता था, खुदा के लिए मुझे इजी लोड करवा दीजिए, 50 रुपए का बैलेंस। मुजीब आलम मरहूम, क्या क्या आवाज है, जो हमसे बिछड़ गए। जी बिल्कुल, मैनी हसन साहब भी, ये भी, लेकिन इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में फरहीन। हमारी प्यारी जी बहना रानी भी आ गई हैं और कह रही हैं सलाम ब्रदर, वाह अखलाक अहमद, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। हाँ, वो भी जा चुके हैं। और सूबे का नाम दुरुस्त बताया आपने, और कराची की कितनी आबादी, आपको कुछ आइडिया है इसका? अच्छा, ये तो खैर मैं भी थोड़ी देर में आपको सारी डिटेल बताऊंगा।
अच्छा नदीम भाई, आज आप रंगों के बारे में भी बताने वाले थे। नहीं आज नहीं बताऊंगा, इतनी देर बाद याद दिला रही हो। फिर कभी किसी शो में बता देंगे, लेकिन बताऊंगा जरूर, डोंट वरी डोंट वरी। और जरीन नूर मेरी प्यारी सी शहजादी बहना कह रही हैं, बिल्कुल दुरुस्त जवाब बताया जरीन आपने। और देखें आपने ना, आपके सारे मैसेज पढ़ रहा हूं, मगर आपने संजू को गाना डेडिकेट नहीं किया, हम करेंगे आपकी जानिब से, यानी कि समझ रही है ना। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों रात पढ़ते हो सर्दियों की शामों में। मैं गाना देख रहा हूं, म्यूजिक सुने आप। गाना नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि जरीन नूर का मैसेज आया है तो मैं अपनी क्यू शीट में देख रहा हूं, मैंने गाने निकाले हुए थे बड़े अच्छे अच्छे अच्छे। जी जनाब, तो एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक जनाब जरीन नूर की जानिब से, संजू आपके लिए। संजू कहां गायब हुई हुई है वैसे, तो मैसेज नहीं आ रहा। संजू ये गाना अगर अच्छा लगे तो आपने फौरन हमें मैसेज करना है। एलो फड़ो।

वेलकम बैक। हाँ जी जनाब, ये हमने किन की जानिब से, जरीन नूर की जानिब से हमने ये ट्रैक डेडिकेट किया। संजू ने रंगों के बारे में अच्छा लिखा है, बेशक बहुत अच्छा लिखा था। और दिल के रंग, हाय हाय रंग ही रंग। और साहब ज्यादा साहब आ गए हैं जनाब, और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। और थैंक्स कहा मेरी प्यारी सी महिला जरीन नूर ने। और नदीम भाई आज आप, अच्छा ये तो हो गया था रंगों के बारे में, आगे बढ़ते हैं जनाब। ये मैसेज कोसाई ने किया है, थैंक यू, मेरे कहने कहे बगैर आपने सॉन्ग सुना दिया। ये हमारी प्यारी सी बहन फरीदा बुरहानुद्दीन है। अच्छा वो कोसाई का मैसेज था। अब आप दोनों एक ही आईडी से भेजते हैं, पता नहीं चलता फरीदा बुरहानुद्दीन है या मेरा छोटा भाई कोसाई है। हैं जी, जी हैं जी। और आगे बढ़ते हैं जनाब। रानी मेरी बहना क्या कह रही है, बहुत खूब बहुत खूब, कह रही है तमाम दुआएं जो आप करते हैं उस सब दुआओं पर आमीन सुम आमीन। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। असल में आप लोगों की फरमाइशें भी ऐसी आती हैं कि क्या बात है। तो जनाब बढ़ते हैं कुछ सवाल के जवाब की जानिब, क्योंकि ये भी थोड़ा सा तवील हो जाएगा। मैं फिलहाल आप लोगों को ये बताऊंगा कि रिसेंटली जो पाकिस्तान में मर्दमशुमारी जो हुई थी वो कब हुई थी, 2023 में हुई थी। गो के इस मर्दमशुमारी को गलत करार दिया गया, खसूसी तौर पर कराची के हवाले से। कराची की आबादी तकरीबन 3 करोड़ से तजावज कर गई है, लेकिन 1 करोड़ 25 लाख ऐसा लगता है आपको। सिर्फ गुलशन इकबाल जो है कराची का एक एरिया है, वहां की सिर्फ आबादी 25 से 35 लाख के दरमियान की है। तो सोचें बाकी जो बड़े बड़े टाउन्स हैं, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। मैं पहले सोच ये रहा था कि मैं आप लोगों को सवाल के जवाब के हवाले से जो है वो कुछ चर्चा करना शुरू कर दूं, मगर फिर मैंने सोचा नहीं भाई, अभी है टाइम, अभी आप लोगों की फरमाइशें पूरी करनी है। तो अभी एक ट्रैक की जाने आप लोगों को लेकर जा रहा हूं, और ये ट्रैक जो है ये जनाब मुझे बड़ा पसंद है यार। ये नाहिद अख्तर साहब की आवाज में है, और ये पिक्चराइज हुआ था शबनम पर, और उस दौर के हवाले से ये गाना बड़ा जबरदस्त है, हैं जी। एंड आई होप कि आप सबको भी पसंद आएगा। और ये ट्रैक जनाब हम किनकी जानिब से, मुश्क की जानिब से डेडिकेट कर रहे हैं, एलो फड़ो।

वेलकम बैक, मैं यसन साहब, क्या बात है, और ना ही दफ्तर हैं जी ते हैं जी, और हाय और आगे बढ़ते हैं जनाब। ये सैफ कासिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। अभी अभी भी आप नहीं मना रहे मुझे। अबे भाई क्या हो गया तुझे, तुम तो महबूबा बन गए फुल टाइम। कसाई मान जाओ भाई। नदीम भाई, ऐसी आवाज आ रही है जैसे कोई थाली में चने उछाल रहा हो। समकुल कह रही है। अरे हाय, चैनल चला गया। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, इसीलिए तो अच्छे अच्छे गाने सुना रहा हूँ। खैर जी, अभी फौरन से पेशतर आपको एक और ट्रैक की जानिब लेकर जा रहा हूँ, और ये ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं किसको?

हाय हाय क्या बात है जनाब। खुशबू लाला कहाँ गायब हो गए हैं भाई? सबा भी गायब हो गए, सबा गोल पे गायब हो गया, लेकिन लगता है सब जगह मच्छर आ गए। खैर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। सारी डिटेल तो खैर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, और अब क्योंकि अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और आखिर में दो डेडिकेशंस मैं करूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अलविदा कहना चाहूंगा। सवाल का जवाब हो गया, और यकीन मानिए कि इस हवाले से मैंने आपको और भी बहुत प्यारी प्यारी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, पॉपुलेशन के हवाले से, आबादी के हवाले से। तो खैर मैंने आपको तमाम सूबों की तफसील तो बता ही दी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और बहुत खतरनाक वाली बात जो है पॉपुलेशन के हवाले से वो आपको बताऊं कि हर साल जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है इसमें 2.5 यानी कि तकरीबन 2.5% जो है वो इजाफा होता है। अब 2.5% कैसे? 1 करोड़ का 2.5% कितना होगा भैया? 1 करोड़ का 2.5% कितना होगा? 2.5 लाख। सही है ना? तो 10 करोड़ का कितना होगा? दस दुने बीस हो गया, और 20 और 10 30 लाख। 10 करोड़ का 30 लाख होगा, और 30 और 30 कितने हो गए? 60 और 15 तकरीबन 70-75 लाख लोग जो हैं, अगर हम सिर्फ 25 करोड़ लगा लें मिसाल के तौर पर कि हमारे पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, तो तकरीबन समझ लीजिए 70-75 लाख लोग जो हैं वो इस दुनिया में आ रहे हैं। ग्रोथ रेट बढ़ रही है। गुफरान भाई क्या है यार? यानी कि समझ रहे हैं ना आप? तो जनाब ये जो है ना, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और ऐसा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि भाई मर गए खप गए पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो है प्लानिंग्स होती हैं, प्लानिंग इन द सेंस के ये जो ईयरली 75 लाख लोग जो है वो आबादी में एक इजाफा हो रहा है हमारे, तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, नौकरियां किस तरीके से आनी चाहिए, तरक्कियां किस तरह होनी चाहिए, 10 साल के बाद जो है पाकिस्तान की आबादी कहां पहुंच जाएगी, रोडों का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, तमाम चीजें इसमें शामिल होती हैं। खैर मैं अभी बातें करूंगा तो बातें बहुत सारी हो जाएंगी। तो खैर जी अभी हम बढ़ते हैं एक ट्रैक की जानिब, और ट्रैक से पहले जनाब हम देख लें कि ट्रैक कौन कौन से हैं। हैं जी तेहन जी, हाँ। तो हमारे प्यारे से अय्यूब लाला की जानिब से हम डेडिकेट करेंगे एक ट्रैक, और एक ट्रैक जो है जनाब हम सलीम मेमन साहब उनको डेडिकेट करेंगे। तो ये दो गाने जो है ये हम डेडिकेट कर रहे हैं, तो इसके साथ ही पहला गाना जो है वो हम अय्यूब लाला के लिए, और दूसरा सलीम मेमन के लिए। ठीक है जी, मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी कल स्लीपलेस नाइट में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

खत लिख रहा हूँ अहद मोहब्बत को तोड़ के, कागज पे आंसुओं की जगह छोड़ छोड़ के। आसिफ अली की आवाज, प्रोग्राम ख्वाब दर्शी मृगान शोभी के साथ एफ एम पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। काश के खुशियां बिकती होती, काश के खुशियां बिकती होती और दुखों का ठेला होता, काश के खुशियां बिकती होती और दुखों का ठेला होता, एक टके में आंसू आते और मोहब्बत चार टके में, एक टके में आंसू आते और मोहब्बत चार टके में, पांच टके में सारी दुनिया, मुफ्त हंसी और मुफ्त सितारे, चांद भी टुकड़े टुकड़े बिकता, ख्वाहिश नाम की चीज ना होती, हाथ बढ़ा के सब मिलता, हाथ बढ़ा के सब मिलता, हम चाहते तो मर जाते, हम चाहते तो मर जाते, जी चाहता तो जीते रहते, ऊंचे नीचे शहर न होते, पानी पर भी घर होते, काश के अपने पर होते, काश के अपने पर होते और वो गहरा नीला अंबर, और वो गहरा नीला अंबर, सात समंदर पार के साहिल, जंगल नदियां गिरता पानी, सब कुछ अपना धन होता, किसी भी चीज की हद न होती, वो करते जो मन होता, किसी भी चीज की हद न होती, वो करते जो मन होता, चांद के किरने पहन के जागते और खामोशी ओढ़ के सोते, रातें दिन भर रुकती होती, रातें दिन भर रुकती होती, काश के खुशियां बिकती होती, काश के खुशियां बिकती होती और दुखों का ठेला होता, एक टके में आंसू आते और मोहब्बत चार टके में, पांच टके में सारी दुनिया, मुफ्त हंसी और मुफ्त सितारे, चांद भी टुकड़े टुकड़े बिकता, ख्वाहिश नाम की चीज ना होती, ख्वाहिश नाम की चीज ना होती, ऊंचे नीचे शहर ना होते, पानी पर भी घर होते, काश के अपने पर होते, काश के अपने पर होते। कितनी खूबसूरत सी एक नज्म, क्या खूबसूरत इसका मूड देखें, काश। अच्छा, ये वो कहते हैं, ये उस मूड की बात कि बचपन में जब इंसान कहते हैं कि बिल्कुल कोई लालच नहीं होता, कोई ख्वाहिश नहीं होती, बस हर चीज अपने काबू में, समझता कि हर चीज मेरे हाथ में है, हर चीज मेरे काबू में है, हर चीज मेरे कंट्रोल में है, क्योंकि वो उम्र का हिस्सा ही ऐसा होता है, वक्त जो गुजर गया सो गुजर गया, उससे गुजरे हुए वक्त की क्या कहानी है, मगर आज भी वही दौर जब याद आता है तो वाकई कहते अंदर का बच्चा जाग जाता है, और हम हर इंसान के अंदर एक बच्चा मौजूद जरूर है, ये तो कंफर्म बात है, हर इंसान के अंदर एक बच्चा हमेशा मौजूद रहता है। ऐ वादा शिकन, ख्वाब दिखाना ही नहीं था, ऐ वादा शिकन, ख्वाब दिखाना ही नहीं था, क्यों प्यार किया था जो निभाना ही नहीं था, ऐ वादा शिकन, ख्वाब दिखाना ही नहीं था, क्यों प्यार किया था जो निभाना ही नहीं था, इस तरह मेरे हाथ से दामन न छुड़ाओ, इस तरह मेरे हाथ से दामन न छुड़ाओ, दिल तोड़ के जाना था तो आना ही नहीं था, दिल तोड़ के जाना था तो आना ही नहीं था, अल्लाह ने मिलने के बहाने थे हजारों, अल्लाह न मिलने के बहाने थे, बहाने थे हजारों, मिलने के लिए कोई बहाना नहीं था, अल्लाह न मिलने के बहाने थे हजारों, ना मिलने के लिए बेपना बहाने हैं, कभी ये कभी ये कभी वे कभी वो,
मिलने के लिए कोई भी बहाना ही नहीं था। देखो मेरी सर फोड़ के मरने की अदा भी, देखो मेरी सर फोड़ के मरने की अदा भी, वरना मुझे दीवाना बनाना ही नहीं था, वरना मुझे दीवाना बनाना ही नहीं था। रोने के लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं थी, रोने के लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं थी, गम और भी थे, गम और भी थे, दिल का हाना ही नहीं था, गम और भी थे, दिल का हाना ही नहीं था। ना हम सही कहते न बनी दिल की कहानी, न हम सही कहते न बनी दिल की कहानी, या गोश बर आवाज जमाना ही नहीं था, या गोश बर आवाज जमाना ही नहीं था। कैसर कोई आया था मेरी संजय गरी को, कैसर कोई आया था मेरी संजय गरी को, देखा तो गिरेबान का ठिकाना ही नहीं था, देखा तो गिरेबान का ठिकाना ही नहीं था, देखा तो गिरेबान का ठिकाना ही नहीं था। वादा शिकन ख्वाब दिखाना ही नहीं था, क्यों प्यार किया था कर निभाना ही नहीं था। ये दुनिया के धंधे हैं, ये दुनिया की कहानी है, और अभी इसी कहानी को बढ़ाते हैं आगे, और शामिल करते हैं हकीम नासिर का कलाम।

नहीं है। अच्छे दिल की बातें भी ऐसी आसानी से नहीं की जाती, लफ्जों को जोड़ना, कहते कि लफ्जों को दस लगे कि बिल्कुल हार में पिरोने वाली बात होती है लफ्ज। अच्छा, ये सब कुछ करने के लिए, इन लफ्जों को इस तरह पिरोने के लिए, लफ्जों को यकजा करने के लिए आपका मुताला बहुत जरूरी है। अगर आपका मुताला वसी है, आपकी नॉलेज बहुत ही वसी है, आपकी मालूमात बहुत ज्यादा है, तो फिर इजहार लफ्जों में बहुत आसानी से किया जा सकता है। और अगर ये सब कुछ नहीं है तो फिर जरा मुश्किल तो होती है।

जी हाँ, वाकई कभी कभी कभी कभार तो घर जाना चाहिए, क्योंकि आवारगी में जब हद से गुजरेगा बंदा तो कभी कभार तो घर चला जाए, कम से कम घर पर अटेंडेंस तो लगवा के आ ही जाए कम से कम, और कुछ नहीं तो। हमें ज्वाइन कर लिया जनाब हमीद गुल साहब ने इस्लामाबाद से, कहता है अस्सलाम वालेकुम, सलामत रहें हमेशा। लाइट अभी आई है, जी हाँ, लाइट की बस मर्जी है, लाइट तो हर जगह यही हाल, अब तो पूरे पाकिस्तान में यही हाल, जब जाती है तो वापसी का कह के नहीं जाती कि कब आऊंगी, कहती अपनी मर्जी से आऊंगी भैया, आप इंतजार नहीं करना मेरा, आप लोग बेफिक्र हो गए, बस टेंशन फ्री हो जाना, मेरा जब दिल चाहेगा मैं आ जाऊंगी जनाब। उसके बाद फिर कहते हैं कि एक शेर, बड़ा खूबसूरत सा शेर लिखा है कि दो कदम पीछे हटा वार करने के लिए, दो कदम पीछे हटा वार करने के लिए उसको कुछ ऐसे लगा वाकई में डर गया, दो कदम पीछे हटा वार करने के लिए उसको कुछ ऐसे लगा वाकई में डर गया। आजकल रात भी ऐसे लग रहे हैं, बंदा हिले तो लग जाता है कि यार ये कुछ ना कुछ हुआ जरूर है, या डर गया या वार, या फिर कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ तो होगा, ये चल रहा है आजकल। बहरहाल खुशामदी कहते हैं हमीद गुल साहब आपको, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, देर आए दुरुस्त आए आपने हमें ज्वाइन किया। रोज एक नया सूरज है तेरी अताओं में, रोज एक नया सूरज है तेरी अताओं में, एतमाद बढ़ता है सुबह की ज़ियाओं में, रोज एक नया सूरज है तेरी अताओं में, एतमाद बढ़ता है सुबह की ज़ियाओं में, भाइयों के जमघट में बेरिदा हुई बहने, भाइयों के जमघट में बेरिदा हुई बहने, और सर नहीं छुपते माओं की दुआओं में, और सर नहीं छुपते माओं की दुआओं में, बारिश तो यारों ने कब की बेच डाली है, बारिश तो यारों ने कब की बेच डाली है, अब तो खाक उड़ती है हर तरफ हवाओं में, अब तो खाक उड़ती है हर तरफ हवाओं में, तुम हमारे भाई हो बस जरा सी दूरी है, तुम हमारे भाई हो बस जरा सी दूरी है, हम फसील के बाहर तुम महल सराओं में, हम फसील के बाहर तुम महल सराओं में, बेवकार आजादी हम गरीब मुल्कों की, बेवकार आजादी हम गरीब मुल्कों की, ताज सर पे रखा है बेड़िया है पाँव में, अब नदीम मंजिल को रेजा रेजा चुभता है, अब नदीम मंजिल को रेजा रेजा चुभता है, घिर गया है बेचारा कितने रहनुमाओं में, घिर गया है बेचारा कितने रहनुमाओं में, रोज एक नया सूरज तेरी अताओं में, रोज एक नया सूरज है तेरी अताओं में, एतमाद बढ़ता है सुबह की जियाओं में, बारिशें तो यारों ने कब की बेच डाली है, बारिशें तो यारों ने कब की बेच डाली है, अब तो खाक उड़ती है हर तरफ हवाओं में, तुम हमारे भाई हो बस जरा सी दूरी है, तुम हमारे भाई हो बस जरा सी दूरी है, हम फसील के बाहर तुम महल सराओं में, अब नदीम मंजिल को रेजा रेजा चुनता है, अब नदीम मंजिल को रेजा रेजा चुनता है, घिर गया था बेचारा कितने रहनुमाओं में, ये कलाम था अहमद नदीम कासमी साहब का। और वक्त 2:25 हो चुके हैं, और जनाब हुमा क्या कहती हैं कि तेरे ख्वाबों में खोना चाहती हूं, बहुत थक गई हूं अब सोना चाहती हूं, और इनके बाद फिर

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीमिया खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100.